0: करो 416 600 55 2000।
1: Masala Chai by Navigators Cafe.
2: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
3: Navigators Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
4: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।
5: ढिलों वीडियो 1980 तो पंजाबी कम्युनिटी दे विच हाजर है। गोर रोड एंड एबनीजर ते लोकेटेड ने IPTV अते गुरबाणी रेडियो दियां सर्विसेज ले। भावे तुसी 4K IPTV सुपर फास्ट अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बॉक्स लेना या थोड़े कोल बॉक्स हैगा पर तुसी ढिलों वीडियो दे कस्टमर बनना चाहुंदे हो, नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ, तुसी ढिलों वीडियो नू कॉल करो। मेन प्रोडक्ट ढिलों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो इंडिया लैके जाण वास्ते बेस्ट गिफ्ट, जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, नितनेम दियां सारियां बाणियां ने, ढाडी वारा ने, 300 शब्द ने, 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी, टोरंटो एयरपोर्ट तो लैके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिलों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो। IPTV दी स्टॉप दी सर्विस या ढिलों वीडियो गुरबाणी रेडियो गो रोड एबनीजर 7 दिन खुले ने 11 to 8। 905-204-1313 905-204-1313। किसी ने भी अगर कार वैन SUV लेना, टॉप टॉप टॉप दा नाम एको है, वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन SUV कोई भी लेना होवे, एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 905-828-5800
6: ਵਾਹ ਨਵੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ।

0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है। ओके सो प्रोग्राम बिला बिरा 905-673-3337 नंबर है अपना 905-673-3337 अपना नंबर है 905-673-3337 ते गल्लां बातां हो रही ने। थानू की सुनाइए, थोड़ी हजे रिक्वेस्टां दो चार मेरे कोल पईआं ने ते उहनां विच्चों इक अद्धी पूरी कर दी यार, थानू खुश कर दी ए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੱਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗਾਣਾ ਬੱਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਕਿ ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ
2: ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ

क्या बात है, की हाल चाल है सब दे। उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नू। वेलकम वेलकम वेलकम, हैप्पी फ्राइडे जूनियर।

0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वेरी गुड। सो सिंपली इंडियन ते एक बार गेड़ा मार के आओ। अज दा साडा सारे दा सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है गेल फार्म वालों। गेल फार्म एंड प्रोड्यूस ते तुसी एक बार गेड़ा मार के आओ ते गेल फार्म ते थानू यार हर एक किस्म दी पनीरी मिल रही है। पहली गल तां डिक्सी ते किंग दे उत्ते लोकेटेड ने 14085 डिक्सी रोड 11 to 7 डेली खुलदे ने। थानू पनीरी सारी दी सारी मिल रही है। राम तोरी, लोकी, कद्दू, भिंडी, बैंगन सारी पनीरी ते पनीरी सिर्फ 249 $2.49 तो पनीरी है। बाकी इन्हां कोल सोयल मनूअर ऑरगैनिक कॉम्पोस्ट फार्म फ्रैश देसी आंडे प्योर फार्म फ्रैश हनी यानी कि शहद ते फ्रैशली मिल कीता चक्की दा आटा होल वीट रागी बाजरा जवार फ्लावर दा। जाओ ते लोकल तुसी शॉपिंग करो एट गेल फार्म कैलडन 1085 डिक्सी रोड डिक्सी एंड किंग गेल फार्म ते तुसी जरूर गेड़ा मार के आओ ते एंजॉय करो। वधिया टॉप टॉप टॉप दी डील एट गेल फार्म।

0: 5256 9257।
1: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवामा देंदे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे। दविंदर पवार
0: फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज होम इक्विटी बिजनेस लोन डेट कंसोलिडेशन रीफाइनेंस रेंट टू ओनली कॉल करो दविंदर पवार 6479888731 6479888731।
1: जे नहीं होना खज्जल खुआर ता कॉल करो
0: दविंदर पवार।
1: जेकर एक बार इना तो अड़ी फाइल वेख के हाँ कह देती ता अपने भा देते हमेशा खरे उतर देहान। लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन एंड ऑपरेटेड।
2: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
3: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
4: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
3: 6475-5294-647-835-5294। शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251।
5: पाजी आज करे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाउना।
6: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
7: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्टी जागो अते वेडिंग ली आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
8: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
9: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
10: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
9: 416-717-2929
10: 416-717-2929 ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ।
11: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475542594 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही हैं।
1: पहला नालों में कट।
0: आ वेखो ऑप्शन पेलो ग्रीनो दिया चुड़िया हुई है किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99
1: ये तो होर भी कट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट।
1: ओए तू किथे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तुहाडे बिजनेस ले पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इस ले असी कई आइटम दिया कीमता कट कर रहे हैं। कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
2: Wholesale Club, whole lot of value.
3: Swing into golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Many Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee support community services and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.
0: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही हैं।
1: पहला नालों में कट।
0: आ वेखो ऑप्शन पेलो ग्रीनो दिया चुड़िया हुई है किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99
1: ये तो होर भी कट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट।
1: ओए तू किथे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तुहाडे बिजनेस ले पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इस ले असी कई आइटम दिया कीमता कट कर रहे हैं। कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
2: होलसेल क्लब, whole lot of value.
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca.

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नू मिलो। इन्हां कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है। इन्हें नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल

0: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
1: छह फुट दो इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले उसमें से एक भी मैच नहीं हारे
2: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा चैंपियन इन पराठा मार्केट
3: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन कोस टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-451-2600 905-451-2600
4: भैन जी तीजा भी आया कैनेडा दे विच ना ही इंडिया वर्गा टेस्ट ना ही इंडिया वर्गी क्वांटिटी छोटिया छोटिया प्लेटा फड़ा देंदे ने जो दूजी बारी खाना लेन जाओ तो बफे खत्म हो जाता है
5: मैनू पता है क्यों मैंने तवा किचन की केटरिंग खादी सी सच्ची कहो तो फूड इन्ना टेस्टी अनलिमिटेड फूड इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुक्या
6: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेरदा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 tawakitchen.ca
1: 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले उसमें से एक भी मैच नहीं हारे
2: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा चैंपियन इन पराठा मार्केट
3: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन कोस टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-451-2600 905-455-2600
7: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
8: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
9: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
10: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज
11: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो शो रेडियो आवाज द वॉइस जिंदाबाद जिंदाबाद फॉर एडवर्टाइजिंग प्लीज कॉल 416-518-3200
12: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड जिथे तुसी ट्रक वॉश ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूफ थले करा सकते हो इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45 तुसी कैट दीयां बैटरियां विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850 सारियां रियर ड्रम and rear brake change at $750 and AC recharge is at just $180 so reach out to them call at 905-452-9955 inada address hai 71 Stafford Drive Brampton they right now a hiring bhi kar rahe ne je tanu truck mechanic da koi experience hai you can call them their number is 905-452-9955
13: रियल एस्टेट दी दुनिया विच आओ अपने सुपनियां नु सच कर विखाओ फेयरडील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
14: रियल एस्टेट दियां बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
13: फेयरडील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
14: आज ही कॉल करो फेयरडील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंधेर नु
13: 905-671-2000
14: फेयरडील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपनियां नु सच कर विखाओ
15: ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਸਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮ ਸੋਫਾ ਲੈਦਰ ਸੋਫਾ ਸੋਫੇ ਡਬਲ ਬੈਡ ਮੈਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਕਾਸਾ ਫਰਨੀਚਰ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਰਡ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ सोफा मार्ट 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन ज्यादा जानकारी लिए कॉल करो परंजीत होरानू 905-803-8056 905-803-8056
16: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट को सीज या फ्रीज कर सकते हैं तुसी CRA दे कर्जे नु लीगली माफ करवा सकते हो फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल DCAF
17: 905-908-2499 905-908-2499 और विजिट 411debt.ca सम कंडीशंस अप्लाई
18: ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या G2 लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए।
19: इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे। अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810, दैट इज 6476562810।
20: ड्राइव कर रहे हो? सोनो एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो? ड्राइविंग लाइसेंस? नो। पुलिस ऑफिसर? नो नो। ट्रैफिक लाइट्स? नो। डन।
21: डायमंड इंश्योरेंस दे अमन कौर गलदा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकती है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 6473259100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
22: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
23: सिमरन बड़ी पतली हो गई है, कुछ खांदी खुंदी नहीं?
24: ले दस, काम तो जा, मैं घरे रोटियां बनावा।
23: तो टिफिन लवा ला,
24: घर का स्वाद कितों मिलता बारो।
23: मतलब तू तवा किचन दा फूड नहीं टेस्ट कीता? तवा किचन बिल्कुल घर वर्गा स्वाद। कस्टमाइज टिफिन पैकेजेस अवेलेबल, फूड क्वालिटी ते क्वांटिटी एकदम लाजवाब।
25: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटेन एश एंड बवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 kitchen.ca।
26: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नू, ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
27: हां जी, हसी गाल जी, अपनी कंपनी मिसेस आगा, आपां नू कैटरिंग दी लोड सीगी ते आपां तवा किचन नाल कांटेक्ट कीता। आपां नू 50 बंदे दी कैटरिंग करवाई सी ते आपणे करीबन 55 तों 60 बंदे सीगे, फिर भी कैटरिंग उहनां कोल मतलब बहुत ज्यादा सी, सानू कोई थोड़ नहीं आई। असी रिकमेंड करदे आ तुसी भी कैटरिंग कराओ तवा किचन तों। थैंक यू सो मच।
25: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटेन एश एंड बवेदा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 TAWA
28: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ 9592200 95 922 00 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ।
29: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਫੇਅਰ ਡੀ ਰਿਅਲਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, 28 ਏਕਰ ਲੈਂਡ ਵਿਦ 2 ਰੋਡ ਫਰੰਟੇਜਸ, ਡਬਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ, 407-418 ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਫਾਰ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਾਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਮ, ਫੇਅਰ ਡੀ ਰਿਅਲਟੀ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਡ ਹਰਦੀਪ ਪੰਦੇਰ, ਐਂਡ 905-671-2000।
30: ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? 11:30 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ?
31: ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
30: ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ?
31: ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਡੋਰ ਤੋਂ ਵੜੋ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸੇਵਿੰਗ 100 ਡੋਲਰ ਦੀ 905-458-1331 ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼, ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੇ ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ 905-458-1300।
32: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
33: ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਅ ਆਫਿਸ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਆਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ 1 ਰੂਫ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੈਰਿਸਟਰ, ਸੋਲਿਸਟਰ ਐਂਡ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ ਚਿੰਕਿਊਜ਼ੀ ਐਂਡ ਬਵੇਡ। ਫਾਰ ਆਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਲ 905-497-1211 905-497-1211।
0: टैक्स का सीजन आ चुका है, पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो, या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे होनियां, केड़े-केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सैट कीते हन, लोन मिल सकदे ने, या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहिदी है। पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साजा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीआं दो लोकेशनस तों नवीआं फाइल्स इत्थे लै रहे ने, उत्थे तुहानूं सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई। टैक्स दीआं सर्विसिज लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन।
1: हाँ वीर रणवीर, किधर फाइल चक्की फिरदा सवेरे सवेरे? ओ भाजी मॉर्गेज लई महीना हो गया, एक डॉक्टर तो दूजे डॉक्टर चक्कर कटदा है यार, आ किन्ने सवाल जवाब करदे ने मॉर्गेज वाले।
2: देख भाई, जे तू लेना मॉर्गेज या लोन
3: ते तेरा काम 24 घंटे च करनगे मिस्टर संधू।
1: अच्छा जी,
4: आहो जी, नीड प्राइवेट मॉर्गेज एंड लोन्स, देन कॉल मिस्टर संधू एट 905-671-2000। नो क्वेश्चंस, नो क्रेडिट चेक, लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स। नंबर रखो याद, 905-671-2000, 905-671-2000। Mr. Sandhu.
0: ਕਰਨੋ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5-star ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401, 416-816-8401-4164-84-01। F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4141।
1: ओ यार, बिजनेस दा माड़ा हाल होया पिया, कितनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
5: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
6: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
7: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
8: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਤਗੜ ਦੇ ਨਾਲ।
1: Disclaimer, the content shared on this radio show is for informational and entertainment purpose only. The hosts are not liable for any actions taken by listeners or callers based on the information provided. Enjoy.
2: Asi karde ha fikar, tusi raho befikar, tusi jiyo befikar. Ki gal bhai ji, enne befikar ta tusi mainu kade nazar nahi aaye. Raaz ki hai. Befikar hon da eh raaz mainu ditta hai Jaswinder Kaur Taggar di insurance policies ne. Sadi life insurance, truck drivers layi disability te critical illness de change plans. Sadi parents layi super visa insurance te bachyan layi RESP. Tusi vi raho befikar te call karo Jaswinder Kaur Taggar nu 6477652345 647-765-2340
3: बंगला मोटर कार दिला दे एक नहीं तो चार दिला दे।
4: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6477702
5: लाइसेंस नंबर 10394।

0: हैरान थी अपनी जिंदगी और सुना था अपना मकान। हाय
1: देखो वैसे पहला हुण तां चलो ये सारा कुछ डिफरेंट हो गया, हुण वैसे बेड बग्स वगैरह हुंदे आ है ना, पर पहला खटमल बड़े हुंदे सी है ना, आपां जदों इंडिया रहिंदे हुंदे सी कईआं दे मंजिआं दे विच वड़े होए हुंदे सी, फिर रात नूं सुत्ते पिआं ते फिर ओह जरूर कट कुट जांदे सी है ना, ते कई फिर दवाईआं दवूईआं छिड़कदे हुंदे सी। खटमल किन्ना मशहूर हुंदा सी पहलां वी मंजिआं च हुंदे आ लुके होए, पर हुण तां मैनूं लगदा जिवें हुण तां चलो ओह तों बाद किन्ना छिड़कां होण लग गिआ दवाईआं दा नहीं है, पर इत्थे हैगे खटमल इत्थे भी मैनूं तां लगदा नहीं वी, पर कई बार कहिंदे हुंदे आ बैड बग्स वगैरह ओही खटमल ही होणे आ ते नाल कुछ होर ऐड हो गिआ होणा है।

0: जे तुसी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: आप पंजाबी आ गए,
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream। What successful IPL season only on Karo Stream। www.karostream.com or call 905-204-13

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ले चांदी दे कड़े, चांदी दी चेन, चांदी दे ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर दे इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे, वे टिकटा दो ले ले।
3: टिकटा दो लेनिया होन या चार, बिजनेस ले जाना होवे या फिर कुमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते, स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल, 2883 डेरी रोड ईस्ट, मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: रात आ मैं छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
5: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालों तो तुहाडी सेवा विच।
4: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
5: कॉल करो 905-874-9878।
6: बंबा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बंबा गया।
7: गल हवे रियल एस्टेट सेल परचेज ऑफ बिजनेसेस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एफिडेविट दी, ता सोचन दी लोड़ नहीं। इको नाम याद रखो, लॉ ऑफ अमन शर्मा, जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज। अमन शर्मा LLB, बैरिस्टर, सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक, 25 चेरीक्रेस्ट ड्राइव, यूनिट 6, ब्रैम्पटन। कॉल 905-913-2355, 905-913-2355।
8: जी दोस्तों, तुसीं जुड़ चुके हो रेडियो प्रोग्राम सारंग नाल, मैं तुहाडा होस्ट एंड दोस्त राजबीर बोपरा। प्रोग्राम दे विच साथ बनिया रहना अपना, 2 बजे तो लैके 3 बजे तक दा अज दे प्रोग्राम दे विच गल्लां बातां भी होणगियां, गीत संगीत भी होएगा, ते नाल दी नाल ही फ्राइडे दा दिन आ, कुछ एक साडे स्पॉन्सर साहिबान ने उहनां दे सुनेहे तुहाडे रूबरू करांगे। स्वर्ण सिंह टाणा साहब पंजाब दी धरती तों खबरां दा बुलेटिन लैके हाजिर होण वाले आ, कुछ पलां तक उहनां नाल गल्लबात करांगे। मोना मैंगी जी हाजरी लगवाउणगे प्रोग्राम दे विच, उहनां नाल भी प्रोग्राम दे विच अग्गे चल के आपां गल्लबात करदे हां इंश्योरेंस बाबत। ते दस दईए कि प्रोग्राम दा इह हिस्सा जिहड़ा ग्रैंड फर्नीचर वल्लों स्पॉन्सर कीता जा रिहा, ते नाल दी नाल ही रैप एंड मूव कंपनी इहनां दे वल्लों स्पॉन्सर कीता जा रिहा। गोल्डन सरप्राइज कैश एंड कैरी एंड DLK सेप्टिक सर्विस वालों अज्ज दे प्रोग्राम दा हिस्सा जिहड़ा उह स्पॉन्सर कीता जा रिहा। होम फैक्स वाले कहिंदे आ कि भाई जेकर तुसीं कोई समान घर दा बनाउणा चाहुंदे हो, जिवें कि तुसीं कोई बेसमेंट बनाउणी है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਹੋਮ ਫਿਕਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ।